गेना के थी ना, गेना के थी ना था, गेना के थी ना, गेना के थी ना था, गेना के थी ना, गेना के थी ना था, गेना के थी ना।